0: तो तुष्करान बो होटल 93 उसके बाद क्या
1: 2025 बाद क्या
0: साइज़ तो निवचा साक्षी वाज़ में बैठ मार्च बरी चीज़ बरी ये सब सुबह री चीज़ दिन चीज़ तो यार वक्त निवे साब दौर
1: बाफ़ यार सालन दरमान अख्तियार सालन इस स्कूल जॉइन जो फ़ोस्ट आका
2: स्कूल
1: स्विमिंग पूल तो स्कूल स्विमिंग पूल तो आ او یار تو چه مربع تو بکرد نه سویمینگ
2: گوکتا
1: گوکتا تا
2: که خوی سر تو اندی دکوشت
1: مزایی تو دیتا که
2: یا مزایی
1: دیتی آو بتا تین سره که چه مرخ شویه
2: بگو ما اوکنه
1: ای که تو کلو بفیتو از شجا ناش ویزه نه ای
2: نه
1: بس هایی خانه یا بکر ویزه آه بافی که باف تو سایکل
3: 这是罕萨山谷里最热闹的巴扎，各式果汁批发商在此聚集。
1: We check it. How is the taste? How is the quality of the product?
3: 亲自品尝挑选最佳风味是第一步。
1: The food is more difficult than the songs. Chinese would like.कैसे हैं भाई ये इसकी क्या प्राइस है मेरे भाई कुछ कर लें कुछ दे देख लें थोड़ा सा कोई हो सकता है अगर हम आपसे
3: 讨价还价控制成本是第二步
1: I am nervous because it's not a small business थोड़ा महंगा बता रहे हैं
4: कम से कम ना करें
1: यार देखना बस उसी चीज पे लगे हुए हैं थोड़ा सा कम कर लें
4: उसका वो खरीदी
1: नहीं है रिटेल में देखा है ना इसमें कम करें ये मेरे ख्याल में 3,900 जो है ना
4: नो प्रॉफिट नो लॉस आपके साथ
1: थैंक यू
4: अल्लाह खुश रखे
1: बहुत शुक्रिया मेरे पे
4: ओके
1: बहुत खुशी हुई आपसे काम करने का इंशाल्लाह आगे बहुत अच्छा काम करेंगे
5: इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमें भी खुशी हुई
1: प्लीज भेज
3: 与供货商的合作协议顺利签署
1: Agreement of supplier and then. Okay.
3: Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay.
6: Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay.
3: Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Ok
1: It's on the roof of the world. I like photography. You can see different signs of clouds. You can see the big mountains. You can see the greenery, the cool breeze. It makes you feel relaxed inwardly. Because in this beautiful nature, no, I don't worry about anything. I don't feel like that I am far away from my home.I feel like my home here in Tashkurwan.
7: 我拿两瓶这个吧。
1: 你可以看一尝。
7: 哦，挺好喝的。
8: 我芒果汁。
3: 艾米的芒果汁颇受欢迎。
1: 啊，对。
9: 这是我们国家的特产，海南包。中巴有一吗？不是我真脆皮。
3: 当暮色降临，塔县的夜市便苏醒过来。巴基斯坦商贩在此云集，琳琅商品在灯火中流转。当然，这里也少不了艾明的摊位。他的商业拓展延续着父辈30多年前开启的跨文化纽带。
1: The road, which is Silk Road, our Karakoram Highway, which was built in 1960s.With the help of Chinese and now becoming CPEC. I will say that my father and my uncle are ambassador of CPEC. Think about this 3 years before. The future of cross-border trade is very bad. I want to bring more beautiful things from Pakistan to Xinjiang in the future.
3: 艾明的家族见证了这条古老商路的时代变迁。